0: हमारी पिक्चर है
1: हमारे
0: पास
1: जो आया सबको जिसके तो सैकड़ों में सारी अपना ही अपना
2: पैसा डाल कर खुश हूँ।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

सत्संग जी हो गुरु रामदास पातशाह कल्याण मोहल्ला चौथा प्रभु की जय कृपा निधान हम हर गुण गावेंगे और ये जो है राग आप श्रवण कर रहे हो ये हमीर कल्याण है। गुरु पातशाह गुरु रामदास महाराज और जो ये रीत है बड़ी पुरातन रीत है पांच ताल दी बराबर दी सवारी है और आज छोटे छोटे बच्चे सामने बैठे हैं मैं कह जरा इन्हों भी हैरान करिए आज सो गुर दे दे के क्योंकि इस तरह ही बच्चे सीखते हैं उत्साह बढ़ता है गुण गाण नाल ही रब नाल प्यार बनता है।

कुर्बान कहे सेवक जन मन प्रतख गुरु निस्तार कर इशनान सिमर प्रभ अपना सिमरो सिमर सिमर

शब्द सौभाग्या गामों सुनो फड़ो मिल पाई गुरकुए रखे साचा सैन मिल उड़ा

जगत है जैसे सपना बिन रत्नवा बारू भीत बनाई रचपत रत नहीं दिन जा तैसे ही ए सुख माया के उज्जो कहां दवा अनु समझ

कृपा करो, दीन के दाते मेरा गुण अब गुण ना विचारो कोई। एक्सटेंड योर मर्सी ओ जनरस गिवर, लॉर्ड ऑफ द मीक, प्लीज डू नॉट कंसिडर माई मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। माटी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गत ए ही। हाउ कैन डस्ट बी वॉश्ड, ओ माई लॉर्ड एंड मास्टर, सच इज द स्टेट ऑफ मैनकाइंड। मेरे मन सतगुर सेव सुख होई, ओ माई माइंड सर्व द ट्रू गुरु एंड बी एट पीस। जो इच्छो सोई फल पावो, फिर दुख ना व्यापै कोई। Whatever you desire, you shall receive that reward, and you shall not be afflicted by pain any longer. Kache pande saaj nivaje, antar jyot samai. He creates and adorns the earthen vessels. He infuses his light within them. Jaisa likht likhya tur karte, hum taisi kirt kamai. As is the destiny preordained by the Creator, so are the deeds we do. Man tan thaav kiya sab apna, eho aavan jana. He believes the mind and body are all his own. That is the cause of his coming and going. Jin diya so chit na aave, mohe anth luptana. He does not think of the one who gave these things. He is blind, entangled in emotional attachments. Jin kiya soi prav jaane, har ka mahal apara. One who knows that God created him reaches the incomparable mansion of the Lord's presence. Bhagat kari har ke gun gaama, nanak das tumhara. Worshipping the Lord, I sing his glorious praises. Nanak is your slave. कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगुण ना विचारो।

वही नदी के किनारे थे, दुनिया उतारने वाला मेरा तन गुरु नानक समाधि लगा के बैठ गया।

और इस अमृत में प्राप्त कौन कर दे हम जिन भिम्बर से अमृत धारा मन पीड़े सुन शब्द विचार जिन्होंने भाई शब्द न सुने कन्ना कटोरे बना के निरोल अमृत बाणी का रस पीता है और खुशकिस्मत गुरु नानक देव दर से सदा ही अमृत हस्त है और पीले भागा वाले किसी महापुरुष ने लिखे है कि जिन्हों के अंदर प्रेम की रत्ती बिन अमलों तो खीवे उन्होंने झूठे अमल की लोड़ ही नहीं जिन्हों के अंदर प्रेम की रत्ती बिन अमलों तो खीवे अठे पैर महल में चानन बरन प्रेम दे दीवे फिर एवें नहीं बलदे भाई दीवे बाबा ईसर सिंह जी महाराज कलेरा वाले महापुरुष फरमाते सन दीवा जगाने वास्ते बड़ी मेहनत करनी पैंदी पहला तो दीवा बनाइए फिर उसनु पकाइए ओले वास्ते तेल सरसों नपीड़ के करना पैंदा सरसों कितों उगदी बड़ी मेहनत फिर तेल पै गया अजे भी नहीं जगदा वट दी लोड़ ओले वास्ते कितनी मेहनत करनी पैंदी फिर वट भी लगा रखी है हुण जगाइए भाई दीवा ए सोना दीवा जगाई किवें जगेगा प्यार दे नाल दीवा जगे जो भाई जग गया दीवा फिर लोग आपे कहेंगे नहीं फलाने घर दीवा जगदा पे आखो सी भाई सारे आखो भाई सरत माई भाई जो मेरे धन गुरु नानक देव दरबार च आके जुड़े हो आओ भागा वाले हो अपनी रचना पवित्र करो सेवक के कम सफले करो प्यार नाल आखो सतनाम धन्यवाद जो गुरु ने प्यारे जुड़ बैठे हो और गुरु जिसने सानू सबों कुछ दिता है साढ़े वास्ते बारह बारह साल उदासियां धार ली बेबे ने किया सी वीर वे देखना निके निके बच्चे श्री चंद लखनी दास तुसी बाहर चले जाते हो फिर उदास होके मेरे को आ जाते हैं कई दिन बेबे साडा भी कोई बापू है आखो सी हो अगला भी कोई बापू दूजिया ने बापू अपने बच्चों मठियाइया लिया के देंगे खिलौने लिया के देंगे तरह तरह की चीजा लिया के देंगे बेबे साडा भी कोई बापू वीर मैं इन्हों छाती ना ला के कहनी हूं पुतो तुहाडा बापू दुनिया का बापू है पर वीर हुण ना जा हुण ना परदेसा नू जा तो प्यारी सात संगत परमकारी दाता जी दोवे बच्चियां नू श्री चंद लक्ष्मी दास गोडिया ते बैठे सानू खा दिता पुत्र जगत का मिठा मेवा है प्यारे पुत्र पिठ नाल आके लग जावे माता पिता की छाती ठर जाती है पर मेरे दाते ने अपने पुत्रों नू उठा के ते बेबे वाल मुखातब होके कहा सुन के गल ए पीरां दे पीर बोले सुन के गल ए पीरा दे पीर बोले रब आप ही पालसी सारिया नू जद के रब दे नाल सब दुखी दिसन करा की मैं दुआ दिला रहा मेरे निरंकार रब बनाया संसार दुनिया दुखी है काम क्रोलो मोहंकार दी अगली साली है बेबे मेनू जान दे ना बिठा इतने संसार रोगी हो चुका है ए संसार रोगी नाम दा दारू दिता उस दाते ने जिस दाल गुरु पुरब मना रहे हो यही दात होती है आए कर प्यार नाल पढ़ो पहले सेहत बोले तो पीछे सारी सही संगत गज के अपनी अपनी हाजरियां लगवा लो बाबा जी बचन करते सन जरा संगत जाके रौला पाता है वो इतों कुछ नहीं ले जाता जरा चुप करके बैठा रहा शब्द की धारणा नहीं करता
بابا جی کہندے سن او گرو کی دگا کا چور ہے تے جڑا گج کے بولدا ہے تے گرو نانک دے در تے دی حاضری لگ جاندی ہے گرو نانک حاضر ناظر تے آو لگاؤ حاضریاں ساڈا گرپرب منایا سفلا ہو جائے پیاری سنگت پہلا سیر بولنے پیچھے ساری سنگت واہ گرو نانک

आप जी विसाखी का पुरब मना रहे हो। कलगीधर पातशाह जी ने खालसा पंथ की अज साधना की सी विसाखी वाले दिन ते शब्द भी उन्हां दा ही है। कलगीधर पातशाह जी का दोवे शब्द राग विच दास पड़ेगा, दोवे शब्द कलगीधर पातशाह जी देने। पहला शब्द जो मैं पढ़ के सुना देवा क्योंकि आप जी नूं कई बारी समझ नहीं आवेगी, कई तुका दी अस्थाई दी तुक है। दीनन को दाता है, गनीमन को गारक है, साधन को रक्षक है कि गुनन को पहार है। अकाल उस्तत ओ वाहिगुरु गरीबां दा मालक है, दीनन को दाता है, ते दुष्टां दा ओ नाश करदा है, ते अपने सेवकां संतां दी ओ रक्षा करदा है, ते ओ गुनां दा पहाड़ है। पहाड़ मतलब दीनन को दाता है, गनीमन को गारक है, साधन को रक्षक है, गुनन को पहाड़ है। तेज हूं को तर है के राजसी को सर है के शुद्धता को

की बाण है कि बुद्ध को उधार है, सुंदर स्वरूप है के भूपन के भूप है, के रूपों के रूप है के कुमत को प्रहार है। ये शब्द रीत जो राग दास शुरू कर रहा है, राग है भटियार। भटियार भी दो तीन तरह गाया जाता है, बिलावल ठाट नाल, मारव ठाट नाल, ते अस्थाई है यदि दस मात्रा छपता, उस तो बाद इसे नूं ही बारह मात्रा विच करके दास ने गाना है। सब तो पहला दस मात्रा झपता, दीनन को दाता है, गनीमन को गारक है, साधन को रक्षक है के गुणन को पहार है। आप जी श्रवण करो। उस तो बाद जो अगला राग होएगा वो होएगा समेदा राग शुद्ध सारंग। मेरी अभय बिनती सुन लीजे, हे रव हे सस हे कर नानिद, मेरी अभय बिनती सुन लीजे। दूजा शब्द रीत राग जेड़ा शुद्ध सारंग विच तीन ताल विच होवेगा, पहला जपताल ते इकताले विच आप जी श्रवण करो।

पर्यो दुख भंजन। हे प्राणनाथ गोविंद कृपा निधान जगद गुरु, कृपा निधान जगद गुरु, हे संसार ताप हरने करना में सब दुख हरो। नानक शरण पर्यो दुख भंजन।

करुणालय है अर्थालय है खल खंडन है मह मंडन है जगदेश्वर है परमेश्वर है। हे प्राणनाथ गोविंद कृपा निधान जगत गुरु हे संसार पाप हरणे करुणा में सब दुख हरो।